0: जनहित विच सूचना मशहूर होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू उम्र दे 75वीं साल दे विच मेडिकल प्रैक्टिस दे 50 साल पूरे होण ते अमेरिकन इकॉनमी दी सब तो माड़ी हालत होण करके ए ऐलान करदे ने कि हरेक बीमार व्यक्ति जो किसी भी उम्र दे विच किसी भी बीमारी दा इलाज करांदा थक गया है तां जो भी उसकी जेब इजाजत दिंदी होवे ओही देके इलाज करवा सकता है। बस इना ख्याल रखियो कि मुर्गी भी ना मरे ते अंडे भी मिलते रहन, इना दे इलाज करन दी समर्था बनी रहे ते तुहाडा घट खर्चे च इलाज हुंदा रहे। कॉल करो 408-687-1899।
1: दोस्तों डॉक्टर साहब अपने नाल फिर जुड़ गए ने कल दी तरह, सो अपना जेड़ा अधूरा प्रोग्राम विच रह गया सी ओनू पूरा करदे आं जी, ते अगे तो फिर आपां अगले प्रोग्राम वल भी जाया करांगे। ते अज दे शहीदी दिहाड़िआं दे उपर खास प्रोग्राम जेड़ा तुहाडे तक असीं पहुंचा रहे हां
2: जी। डॉक्टर साहब ते सुन वाले सारे ही श्रोतिया नू गुरदीप सिंह संधू वालों बड़े प्यार सत्कार नाल सत श्री अकाल। असि इस शहीदी पंद्रवाड़ा जो दिसंबर दा आखरी दो वीका है ओदे संबंध विच वापरिया सिख इतिहास दीआं घटनावां दा जिक्र कर रहे हां, और उन्हां घटनावां दा जिक्र करदे होया कल असा एह गल कही सी आनंदपुर साहब दे किले तो निकलन दे कारणा दी गल व्याख्या कीती सी असी, और एक सज्जन ने भी कहा सीगा भी ओदे होर भी कारण हो सकदे ने, या महासंघ दे संबंध च जदों असी गल कीती सी उन्होंने भी कहा सी भी होर कारण हो सकदे ने। वैसे क्योंकि मैं ते इस गल दा वैसे ही हामी आ कि हर गल तर्क संगत होनी चाहीदी है कि ये हो सकदी कि नहीं हो सकती, या एदे विच कुछ होर भी हो सकदा हैगा।
3: बिलकुल डॉक्टर साहब,
2: हां जी, जब तक असी वन साइडेड होके किसी गल नूं विचारदे आं भी मैं ही ठीक हां, उस वेले असी गलती कर रहे हुंदे आं।
3: बिलकुल बिलकुल,
2: और इस गलती दे संबंध विच कल मैं उस तों बाद फिर होर भी इतिहास दी फरोला फराली कीती, और उस दे विचों कुछ होर एहो जिहियां बड़ियां अचंभे वालियां गल्लां निकलियां कि जिहड़ियां मैं समझदा भी साडा सिख इतिहास अगर सुनेगा तो एकदम अचंभा होएगा या मनन तैयार नहीं होएगा
3: जी।
2: सज्जन ने इतिहास दे विच लिखा आ भी साडे कोल जिस तरह नील नदी दी घाटी, नील नदी है ना
3: जी, जी बिल्कुल,
2: नदी दा 4000 साल पुराना रिकॉर्ड साइंसदाना ने इकट्ठा कीता होया कि एदे च कदों चढ़ा आउंदा है, कदों उतरा आउंदा है, किस किस तरह एदी जिहड़ी क्रिया है ओह चलदी है, नील नदी जिहदे च जहाज भी समुद्री जहाज भी चलदे आ
3: जी जी, मिस्र दे विच जी
2: सुनिया होना ओदे बारे ज्यादा जी। इसे तरह करके एक सज्जन ने कल उस फरोला फराली दे विचों मैनूं इह मिलिया भी लिखिया भी साडे कोल पिछले 200-300 साल दा रिकॉर्ड मौजूद आ कि उस समय दे विच जिहड़ा समा असी दिसंबर दे दिनां दी गल कर रहे हां, उस समय दे विच उत्तरी भारत दे विच किते भी हड़ नहीं सी आउंदे, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
3: ਜੀ।
2: ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਭਈ ਜੇ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭੀ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ
3: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
3: ਜੀ,
2: ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਰਤਾਂਤ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ
3: ਜੀ।
2: ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਖ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰ

सो दोस्तों, गल इदा भाई, सोचने वाली गल ए है कि हजारां साल बीत गए ने ते 80 साल सानू आजाद होयां नू भी हो गए ने। ठीक है जी, साडे च कोई बदलाव या क्रांति क्यों नहीं आई, चक्कर की है? साडे तो पिछले अगे निकल गए, रौला रप्पा बहुत सुनिया, पर अंत विच ओही बाबा रामदयाल ते ओही भूरी खोती, सारे खोते पार्लीमेंट च बह गए ते साडी खोती बोर्ड थले खलोती। हां जी, बदलाव नहीं आया कोई। हुण तुसी सोचते होगे कि क्यों बदलाव नहीं आया। हां जी, साडा रैंक

झकड़त पसीना छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है यमला पगला दीवाना हो।

0: वीर सिंह, बहुत नाज है ना हिंदुस्तान को तुम्हारी सिख रेजिमेंट पर। अरे तुमने कड़े पहने तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। देख देख तेरे सीने पर पांव रखकर कश्मीर की सरजमीं पर हम हमारा झंडा लहराएंगे।
1: ओ खुशिया, तू नहीं जानता सिक्का लो केस कच कड़ा कृपान गंगा सिखों का निशान। ढूंढते रह जाओगे नक्शे में पाकिस्तान।

अच्छा जी, कोटला निहंग सिंह कोई इस तरह का नाम है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी हैरानी की गल है भाई, सांभ के रखिया भी तो कुछ वेख लो, चमकौर की गढ़ी नजर नहीं आती, ठंडा बुरज नजर नहीं आता, वो कंध नजर नहीं आती साहबजाद वाली, हां जी बहुत सारे होर भी। हां जी, हां जी, अच्छा, बिल्कुल, एक विलक्षण जंग हुई जिहड़ी दुनिया के इतिहास विच इहो जी होर किते नहीं हुई।

0: हाँ जी
1: बोलो। हाँ शब्द कोई नहीं, मैं आ जाएगा मैसेज, जो आवाज आने चलेगी, तो मैं डे इधर ट्राई कर, तुम बोली जाओ।

0: Tatsa.
1: ठीक है जी ठीक है फिर मैं और जा चल
2: रहे चलो
1: चलो थैंक यू वेरी मच मेहरबानी जी सत श्री अकाल।

क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों अज आपां मैं लभ के रखे सी इह दो ओह तुहाडे रूबरू कीते आ, शुक्रिया तुहाडा वी, धन्नवाद। सो आपां अगले प्रोग्राम वल चलदे आ, इक अद्धा गीत कोई होर सुन दे, अपने को 10 मिनट पए आ, उस तो बाद आपां खबरां वल चल जाणा। ते लो जी फिर आपां इसे चाल च रखिया जावे है ना इस प्रोग्राम नूं। लो जी मनमोहन वारस।